0: दुनिया का इतिहास पढ़ा जाएगा भारत का खास तौर से, तो मोदी जी महंगाई मैन के रूप में जाने जाएंगे और ये वो कीर्तिमान बना के जा रहे हैं महंगाई का। और मैं तो कहूंगा ये सरकार हट धर्मिता के साथ, सिर्फ इतना ही कह रहा हूं और कोई शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, जनता के जेब पर डाका डाल।
1: हम तो लगातार कह रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था गोते खा रही है, डिमांड और सप्लाई के अंदर बहुत लंबा गैप होता जा रहा है और आने वाले दिनों में और स्थिति खराब होगी। सरकार इसके ऊपर गंभीर नहीं है, सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर के इसके उपाय तलाशने चाहिए, उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। लोगों की जेब के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ रहा है, हर चीज बढ़ रही है।

0: Welcome back. We're getting some breaking news from Uttar Pradesh, Shamli, where what we're learning is that a case of alleged love jihad is emerging. So alleged Shamli conversion love trap shocker Ayush Malik becomes Muhammad Ali. As per cops, property worth crores is behind the plot. Cops say that woman gym trainer trapped Ayush Malik and the trainer Chandani Qureshi converted Ayush Malik, and Chandani showed radical Pakistani videos to Ayush, after which he was converted. And Chandani converted Ayush and named him Muhammad Ali. This happened in 2023. As per cops, the plot was to grab Ayush Malik's family assets, as he's a son of a millionaire. And the cops have arrested Chandani, but no nikah proof has been found by the cops. The family says that Ayush was converted and radicalized, and the cops say that the de-radicalization of Ayush is underway. So multiple videos of Pakistani radicals were shown to Ayush Malik by the woman gym trainer named Chandani, and that is when he was converted back in 2023. Now Chandani Qureshi has been arrested, and the de-radicalization of Ayush Malik is also underway.
1: फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गया है इसमें. अभी इसका जो भाई है, जो उसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है. इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है, और भी तमाम जो इसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने इस ढंग की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए, उन पर हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे.
2: चांदनी कुरैशी ने मित्रता की और फिर अपने जाल में, प्रेम जाल में फंसाया, उसकी वीडियो बनाई और फिर उसको अपने साथ निकाह करने के लिए तैयार किया, और यदि निकाह नहीं करोगे तो ये वीडियो सबको दिखा दी जाएगी. अब वो इस डर में इस्लाम मजहब स्वीकार करके उसने उस चांदनी कुरैशी के साथ में निकाह पढ़ लिया. चांदनी कुरैशी और उसके परिवार पर शिकंजा कसा जाए और धर्मांतरण आदि धाराओं में इनको जेल में डाला जाए.
0: And my colleague Arvind Oja is now joining us with more details on this. Arvind, कैसे चांदनी ने फंसाया आयुष मलिक को? क्या क्या कुछ दिखाया गया जिसकी वजह से वो रेडिकलाइज, आयुष मलिक को रेडिकलाइज किया गया और कन्वर्जन किया गया?
3: बिल्कुल, देखिए 2023 में जो आयुष मलिक है उसको मोहम्मद अली बनाया गया, और इसके पीछे एक लंबी कॉन्स्पिरेसी रची. दरअसल चांदनी जो कुरैशी है वो शामली में फिजियोथेरेपिस्ट है. आयुष मलिक को फ्रैक्चर आया था जिसके बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था, और उसके बाद प्लान के तहत जो चांदनी कुरैशी है वो आयुष मलिक के कॉन्टेक्ट में आती है और धीरे धीरे अपने जो प्यार के जाल में उसको फंसाती है. उसके बाद वो आयुष मलिक को पाकिस्तान के कलर का एक जो मौलाना है उसका वीडियो देखने के लिए कहती है, और इस तरह से फिर आयुष मलिक का ब्रेन वॉश होता है. 2023 में उसको दिल्ली लेकर जाती है चांदनी कुरैशी और उसकी फैमिली, और वहां उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है. आयुष मलिक से मोहम्मद अली उसको बनाया जाता है. उसके बाद लगातार आयुष मलिक को ब्लैकमेल करती है चांदनी कुरैशी और उसका परिवार, और उसके बाद पैसे मांगे जाते हैं, और आरोप फैमिली की तरफ से लगाया गया आयुष मलिक की तरफ से कि लगातार उसको वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया जा रहा था. और आयुष मलिक की फैमिली शामली की बहुत रईस फैमिली है, बहुत पैसे हैं उनके पास. प्लान यही था कि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाए. तो पुलिस में जब कंप्लेंट दी गई तो जो फिजियोथेरेपिस्ट है साथ ही साथ जिम ट्रेनर भी है चांदनी कुरैशी, उसको अरेस्ट किया गया है. उसकी फैमिली में उसके जो फादर है उसको अरेस्ट किया गया है. 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, कई इसमें एब्सकॉन्डिंग है. 2 मौलानाओं के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है. दिल्ली जो शामली पुलिस है वो दिल्ली भी गई है जहां पर इसका धर्म परिवर्तन कराया गया है, उस मौलाना की भी तलाश की जा रही है. इस मामले में फेक निकाहनामा की भी बात सामने आ रही है कि जो चांदनी कुरैशी है उसकी शादी आयुष मलिक से करवा दी गई थी, लेकिन इस तरह का कोई निकाहनामा शामली पुलिस को नहीं मिला है. शामली पुलिस का कहना है कि इस मामले में कुछ बड़ा रैकेट हो सकता है. उसी को अनर्थ करने की कोशिश शामली पुलिस की लगातार जारी है।
0: जी अरविंद, हमारे साथ बने रहिए। सो अ सेंसेशनल केस ऑफ अलेज्ड लव जिहाद एंड कन्वर्जन केस इज नाउ रॉकिंग उत्तर प्रदेश कम्युनल टिंडर बॉक्स शामली। द केस ट्रिगर्ड मैसिव कंट्रोवर्सी आफ्टर पुलिस अरेस्टेड अ वुमन जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी एंड हर फादर इस्लाम कुरैशी। अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश पुलिस, द केस रिवॉल्व्स अराउंड आयुष मलिक, हुज सन ऑफ अ मिलियनेयर बिजनेसमैन फैमिली फ्रॉम शामली, हु वॉज कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड ब्रेन वॉश्ड टू अडॉप्ट द नेम मोहम्मद अली इन 2023। नाउ पुलिस क्लेम दैट चांदनी कुरैशी, हु ऑल्सो वर्क as a physiotherapist, first came in contact with Ayush Malik during his fracture treatment. She later targeted him for his family property and even developed close ties with him through a gym where she worked as a trainer. Investigators allege Ayush was emotionally exploited, blackmailed and shown videos of Pakistani Islamic preacher Israr Ahmed. He was gradually distanced from his family under a well-planned plot by Chandani and his family. Now, cops suspect the ultimate motive was to gain access to the Malik family's property worth crores, since Ayush is an only child, is the only child of the millionaire family. Police say that Chandani's brother worked at Ayush's medical shop and knew about the family's wealth. The FIR also names two unidentified Maulanas allegedly linked to the conversion process. Police claim that Ayush became deeply religious after the alleged conversion, though no valid nikah nama has been recovered so far. So that is the love jihad case, which is emerging from Uttar Pradesh's Shamli, where we told you how Chandni Qureshi brainwashed Muhammad Ali. We'll get you more details and, in fact, the entire process on how Chandni Qureshi brainwashed and converted Ayush Malik. This happened in 2023, and Chandni Qureshi has now also been arrested. So we'll tell our viewers more about it. How exactly was the conversion carried out and how exactly did the brainwash happen? So Chandni Qureshi, she was a gym trainer and she came in contact with Ayush Malik. So Ayush Malik, it is important to know that Ayush Malik is from a millionaire business family in Uttar Pradesh, Shamli. Now, family's high-value property was the main target of Chandni Qureshi. So the main target was Ayush's property and Ayush is the sole child of his parents. Chandni Qureshi's brother worked at Ayush's medical shop and that is how they knew about the family's assets, the family's property, and that is why that was the main target. Now, Chandni got close to Ayush during his treatment. So, Chandni was also a physiotherapist and Ayush Malik got a fracture. And that is when Chandni got close to Ayush Malik. Chandni trapped Ayush at a gym. So, there was also a gym where Chandni was a gym trainer and that is where the two got close. And Ayush was shown Pak Maulana's video and was then radicalized. So, Chandni used to show Ayush some videos of a Pakistani Maulana, Islamic preacher, and he was then radicalized using those videos, and then he was forcibly converted to Islam in 2023 and he was named Muhammad Ali. So the conversion happened in 2023 and Ayush Malik then converted and named himself Muhammad Ali. My colleague Arvind Ojha continues to stay with us. Arvind, kya ye ek akela mamla hai jisme Ayush Malik ka conversion hua hai Chandni Qureshi ki taraf se, ya aise aur bhi mamle ab samne aa rahe hain, aur bhi ladkon ka conversion kiya gaya hai Chandni ke dwara?
3: देखिए, इस मामले में जो शामली पुलिस के एसपी हैं, उन्होंने इंडिया टुडे को बताया कि सभी पूरे मामले की शुरुआत है, ये इन्वेस्टिगेशन आगे भी जारी रहेगा। खासतौर से जो दिल्ली में मौलाना है उसको अरेस्ट करने की कोशिश शामली पुलिस की है, लेकिन जिसमें शॉकिंग बात यह है कि जो आयुष मलिक कभी हिंदू था, वो उसको जब कन्वर्ट कराया गया, मोहम्मद अली बनाया गया, पूरी तरह से वो प्रॉपर दाढ़ी रखता है और अब उसको हिंदू धर्म में वापस लाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन वो काफी टफ हो रहा है क्योंकि उसका इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि वो अपने आप को मुस्लिम ही मानता है और इंडिया टुडे ने उसकी पिक्चर भी एक्सेस की है। वो पिक्चर देखकर समझा जा सकता है कि किस तरीके से उसका ब्रेन वॉश किया गया है। वो जिम जाने का शौकीन था, बी फार्मा का उसने कोर्स किया हुआ था, जिम जब वो जाता था तब भी चांदनी जो उसके कांटेक्ट में आई थी, चांदनी कुरैशी, और उसके बाद धीरे धीरे 2018-19 से उसका ब्रेन वॉश किया गया। फिर उसको इसरार अहमद जो पाकिस्तानी मौलाना है उसका वीडियो दिखाने के लिए कहा गया। जो पाकिस्तानी मौलाना इसरार अहमद है वो कन्वर्जन रैकेट में भी वहां पाकिस्तान में एक्टिव रहा है, तो उसका वीडियो दिखाकर उसको कन्वर्ट कराया गया है। साथ ही साथ शामली पुलिस का कहना है कि एक बड़ा रैकेट हो सकता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन फिलहाल शामली पुलिस कर रही है। आयुष मलिक को पूरी तरह से मोहम्मद अली बना दिया गया था, फिलहाल उसकी फैमिली के पास उसको दिया गया है। और आयुष मलिक की बात की जाए तो उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जो दवा के बहुत बड़े बिजनेसमैन है शामली में, और उनकी प्रॉपर्टी पर धीरे धीरे कब्जा करना था। पूरी फैमिली को कन्वर्ट कराने की कोशिश लगातार की जा रही थी।
0: जी अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो दैट इज द लेटेस्ट दैट्स कमिंग इन, हाउ आयुष वाज रेडिकलाइज्ड, हाउ आयुष वाज कंप्लीटली ब्रेन वॉश। इनफैक्ट द डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस इज स्टिल अंडर वे बिकॉज ही हैज बीन कंप्लीटली रेडिकलाइज्ड। वी विल टेल यू मोर अबाउट दिस लव ट्रैप दैट वॉज लेड बाय चांदनी। So this was gym trainer Chandni's love jihad, love trap. So Chandni was the key link in the Ayush trap plot. This is as per the Uttar Pradesh police. She built emotional influence over this millionaire's son, Ayush Malik. In fact, the gym trainer Chandni made Ayush watch radical Pakistani videos. The videos were of an Islamic preacher, and that was shown to Ayush Malik repeatedly. And that is when Ayush Malik was also distanced from his family. Chandni was behind doing so. And Ayush is also the lone child of the millionaire family. And that is why the target was the property and the assets of the Malik family. Chandni and the entire Qureshi family plotted to grab the property of Ayush Malik worth crores. So that was the main target behind this conversion and love jihad. Chandni and her father, Islam Qureshi, have so far been arrested. And the de-radicalization of Ayush Malik is also underway. So this is how Ayush Malik was trapped, the son of a millionaire family was trapped. He was the lone child of the family, and this is how he was trapped, and he was then converted. And the investigation is still underway. The de-radicalization process is also underway. Now, shifting focus, we're getting some breaking news. And these are the visuals of the monster quake that has struck Philippines. And the quake measuring 8.2 has now rocked Philippines. And U.S. tsunami warning system, tsunami threat has been issued after the earthquake of magnitude 8.2, which struck Mindanao in Philippines. And these are the visuals. Shopping mall has been crumbled into debris after this earthquake. The locals have been evacuated as the building collapses, as you can see in these visuals. The destruction has happened due to earthquake across the Philippines. So mall crumbles in General Santos City after a major earthquake. It can be also called a monster quake because the intensity was 8.2. And that has rocked Philippines. And this earthquake caused major damage in Philippines. Several buildings have collapsed. As you can see in these visuals, people were then quickly evacuated. Shopping center with fast food restaurant was also reduced to rubble in the province's General Santos City, while a school building that officials said was unoccupied crumpled in another. So those are the horrific visuals emerging from Philippines, which has been rocked by an earthquake measuring 8.2 on the scale. And these footages show the kind of destruction that has happened in Philippines due to the monster quake. So these are the visuals from Philippines. As you can see, this is a shopping mall in Philippines that completely collapsed and was reduced to rubble after the 8.2 monster quake. We're showing you different visuals from Philippines. The extent of damage is clearly visible. You can see children in the visuals on the right. In fact, a school has also collapsed, but the people were evacuated. You can see complete mayhem, complete chaos in Philippines following the powerful quake that struck the Philippines. Students of Martinao National High School in Davao moved to safer grounds, as you can see in the visuals on your right. After a strong earthquake struck Philippines, the earthquake measured 8.2 on the scale, and complete destruction in Philippines. Several buildings reduced to rubble, as can be clearly seen. The buildings can be seen collapsing. The people were evacuated, but there's complete chaos and destruction in Philippines after the 8.2 monster quake. And with that, we're now slipping into a very short break. But do stay with us, as on the other side, we'll get you more on this monster quake that has struck the Philippines.
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen. And you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.

0: दुनिया का इतिहास पढ़ा जाएगा भारत का खास तौर से, तो मोदी जी महंगाई मैन के रूप में जाने जाएंगे और ये वो कीर्तिमान बना के जा रहे हैं महंगाई का। और मैं तो कहूंगा ये सरकार हट धर्मिता के साथ, सिर्फ इतना ही कह रहा हूं और कोई शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, जनता के जेब पर डाका डाल।
1: हम तो लगातार कह रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था गोते खा रही है, डिमांड और सप्लाई के अंदर बहुत लंबा गैप होता जा रहा है और आने वाले दिनों में और स्थिति खराब होगी। सरकार इसके ऊपर गंभीर नहीं है। सरकार को सर्वदलीय बैठक बुला करके इसके उपाय तलाशने चाहिए। उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। लोगों के जेब के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ रहा है, हर चीज बढ़ रही है।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Forget everything you had planned for this weekend because you are sitting on your couch and winning from the comfort of your own home. I'm here with SpinQuest, where you can play hundreds of slot games, all of the table games you love, and you could even win real cash prizes. New users, $30 coin packs are on sale for $10 at SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: This is the sound of Jack buzz-cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
3: Oh, ouch.
2: However you make money work, we can work with that.
4: Mobile carriers, message, and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: Jack FM, now playing what we want, commercial-free, on TuneIn Premium.
6: What about me, Jack? What about me?
5: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
7: Well played, Jack. Well played.
5: Jack FM, playing what we want.
8: दिनों में और स्थिति खराब होगी. सरकार इसके ऊपर गंभीर नहीं है. सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर के इसके उपाय तलाशने चाहिए. उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है. लोगों के जेब के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ रहा है. हर चीज बढ़ रही है.
9: सिर्फ चुनाव जीतने तक आप महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, चुनाव जीतने के बाद आप जबरदस्त तरीके से महंगाई बढ़ाएंगे और जिन देशों के साथ भारत की आप तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं अमेरिका और कनाडा में गैस महंगी है और भारत में सस्ती है. जरा बताइए, अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? कनाडा में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? माफ कीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 142वें स्थान पे हैं नरेंद्र मोदी जी के राज में.
10: लंबे समय तक भारत सरकार के प्रबंधन की वजह से लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी वृद्धि हो रही है. लेकिन जैसे ही पश्चिम एशिया का संकट सुलझेगा, होर्मुज का विवाद सुलझ जाएगा, तो ये स्थितियां सामान्य होने लगेंगी और लोगों की मुश्किलें आसान भी होंगी.

0: Trinamool Congress MLAs who are still not in the rebel camp, they had attended that meeting. So that also gives you a sense that how things are in a state of flux. People like Kunal Ghosh, Farhad Hakim, Noina Bondopadhyay, these are MLAs who went and attended the chief minister's meeting. This was unthinkable, even a few days back. I can tell you, a source of mine tells me that Ritoprata Banerjee yesterday, after he gave that interview to me, there was a very senior woman Trinamool Congress MLA, lawmaker,
1: all right,
0: who met Ritoprata Banerjee at his office in South Kolkata for discussions. So
1: all
0: that
1: right.
0: also has happened. So the numbers, as I say, are continuously getting inflated.
1: Absolutely. Indrajit, do stay with us. So unexpected and unthinkable things unfolding within the TMC. Trouble is clearly mounting for the senior TMC leadership, including Mamata Banerjee, who herself is in the national capital where all the drama is taking place. So as turmoil continues in the Trinamool Congress, the party is set to move to Calcutta High Court today, challenging the appointment of Ritoprata Banerjee as the leader of the opposition in the Bengal Assembly. After TMC MP Shukendu Shekhar Ray resigned as the Rajya Sabha MP, five other TMC MPs held a key huddle with Shukendu in Delhi, while Mamata Banerjee is also in Delhi for the key opposition India Bloc meeting. Now, TMC MPs in huddle included Sharmila Sarkar, Prasoon Banerjee, Shukendu Shekhar Ray, Jagdish Basunia, Kalipada Soren and Arup Chakraborty. So, in a big jolt to the TMC, Rajya Sabha MP Shukendu Shekhar Ray quit as the MP and also resigned from TMC, citing corruption and law and order failure in Bengal under earlier Mamata regime. He also alleged atrocities against women under TMC rule. Shukendu also praised BJP's historic electoral win in Bengal. In fact, he also spoke exclusively within India Today and said that more TMC MPs may join rebels after 60 MLAs dumped Mamata Banerjee. Speaking to India Today, Ritoprata Banerjee in an exclusive conversation claimed support of 61 MLAs and said that the numbers are only going to increase. He reiterated his demand for a floor test in assembly. The rebel TMC MLA also launched a sharp attack on Abhishek Banerjee, saying that this is their team's win against his despotic mindset and asserting that dynastic politics will not succeed in West Bengal. Ritoprata, however, requested Mamata Banerjee to be their advisor and guiding force while saying that he wants nothing to do with Abhishek Banerjee. Amid this exodus, TMC MP Kirti Azad backed Mamata Banerjee, declaring that he stands with Didi and saying that the traitors are free to leave.
2: Arjikar mein jo hua tha, uska asar dekhiye, sirf Arjikar ke liye nahi tha. वो एक तो दिल में है, हजारों कारण था जिसके लिए आम जनता खफा हो गए थे, वो नहीं निकल रहा था। जैसे ही अर्जीकर घटा, सारे जनता सड़क पर आ गए। अभी तो मैं पार्टी से बाहर हूँ, हमारा पार्टी का जो हम जब पार्टी में थे उस समय वो लोग जो थे, कोई इसका विचार विमर्श कुछ नहीं किया गया, इतना क्योंकि उसका पावर मस्तिष्क मथे पे अंदर चला गया कि हमको कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया में। अरे भाई, आम जनता ने तुमको चुन के भेजा है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने तुमको नीचे गिरा दिया, अब देखो कैसे गिराया।
3: एमपी लोगों के साथ हम लोगों का बात हुआ है, मेरा बात हुआ है कल नंबर ऑफ एमपी से, तो नंबर ऑफ एमपी से बात जो जैसे हुआ है सभी दिल्ली में है, तो पार्लियामेंटरी पार्टी का मेंबर है सब लोग, तो पार्लियामेंटरी पार्टी का मेंबर 10, 15, 16, 17, 18 लोग अगर एक साथ बैठना चाहते हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठे हैं, अगर बैठे हैं तो अच्छा है। हम लोग में बंगला में जो बात का जिक्र किया था कि हम लोग बंगाली में जो इच्छा कहते हैं, तो इच्छा का जो यूनिटी होता है बहुत जरूरी है, और कलकत्ता से दिल्ली का दौरा ही 1435 किलोमीटर है, ये इच्छा कलकत्ता से दिल्ली तक ट्रेवल कर चुका है। शुकेंदुदा का जो उन्होंने बोले है, मैं मेजोरिटी जगह में उनके साथ एकमत हूँ, और खास करके जहां तक पार्लियामेंट का अपर हाउस का फंक्शनिंग था, शुकेंदुदा जो बोले है वो एकदम सही है। हालात ऐसा चल रहा है कि क्विज मास्टर को शायद 2029 में मौका ही नहीं मिलेगा पार्लियामेंट में जाकर ये क्लाउनगिरी करने का। और शुकेंदुदा जो बोले है एकदम सही, खराब भी लगता था कि शुकेंदुदा जैसे पार्लियामेंटेरियन उसको लास्ट रो में धकेल दिया गया है, तो ऐसा आज शुकेंदुदा बोल रहे हैं, कल और लोग बोलेंगे।
4: बंगाल में बीजेपी पार्टी के ऊपर समर्थन से ज्यादा ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी की गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आम लोगों की गुस्सा

0: हम 20 लोग थे जिन्होंने आज सिग्नेचर किए हैं, तो हम लोग एक सेपरेट ब्लॉक मतलब तैयार किए हैं। हम लोगों का वॉइस यहाँ से मतलब सेपरेट ब्लॉक से ही उठेंगे अभी।
1: अच्छा, सो तृणमूल के अंदर आप लोग एक अलग गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तृणमूल से निकलने की कोई गुंजाइश अभी नहीं है अलग से।
0: नहीं,
1: तो आप लोग तृणमूल कांग्रेस में ही रहेंगे?
0: अभी तक तो ऐसा ही है, मतलब हम लोग तृणमूल का ही है लेकिन सेपरेट ब्लॉक है। हम लोगों का मतलब जो है काकुली घोष दोस्तीदार अभी भी चीफ व्हिप है और शताब्दी राय है डिप्टी लीडर। तो अभी देखा जाएगा कि हम लोगों का लीडर कौन होगा। तो हम लोगों का जो है ये 20 अभी तक तो 20 है, शायद और भी बढ़ जाएगा। तो हम लोग इकट्ठा होकर ये डिसीजन लिए है।
1: क्यों आपने ये डिसीजन लिया? आप सिर्फ 2 साल पहले चुन के आए हैं।
0: हाँ वही वही, मैं तो 2 साल पहले एकदम पॉलिटिक्स में, मैं एकदम नई हूँ, ठीक है, मुझे पॉलिटिक्स नहीं आता एकदम क्लियर, यही बात है। लेकिन मैं आई कि हाँ दीदी का जो है ना, दीदी का जो काम है, दीदी का जो इमेज है, दीदी इतना लड़ाई करके इतना स्ट्रगल करके सीपीएम को हटा के लाई, मतलब आई पावर में, उसके बाद बहुत सारे काम भी किए और लक्ष्मी भंडार कन्याश्री जैसा मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ किए थे। तो मुझे लगा कि मैं भी शायद कुछ कर पाऊंगी। लेकिन आने के बाद जो है ना, जो पहले लोग थे मतलब 98 से जो लोग काम कर रहे थे, उन लोगों को मैंने देखा कि बैठा के रखा है, उन लोगों का कोई काम नहीं है, मतलब उन लोगों को पार्टी में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और इतना मतलब इंटरनल कंफ्लिक्ट है। तो हम मतलब ये लेकर ही बहुत परेशान थे। उसके बाद तो अफ्टर मतलब क्या हुआ, इलेक्शन के बाद मतलब एक महीना बाद ही हम लोगों को बोला गया था कि तुम एक रिपोर्ट भेजो कि कौन कौन सपोर्ट किया है कौन कौन नहीं। तो मैंने जिन्होंने सपोर्ट नहीं की थी तो उसके बारे में कुछ रिपोर्ट लिखी थी। तो रिपोर्ट ऊपर में नहीं जाकर वो रिपोर्ट जिसके अगेंस्ट में मैंने लिखी थी उनके पास ही चले गए। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इससे शुरू होता है और बहुत सारे कुछ है जो मतलब हम लोग, हमको लगा है कि ये खड़ा भी हो रहा है लेकिन ठीक है टॉलरेट कर रहे थे। अभी जो हो रहा है इतना करप्शन इतना कुछ मुझे पता नहीं था, बिल्कुल पता नहीं था। मैं तो काम करने आई थी इधर नौकरी छोड़ के, और कोई भी मुझे बोल सकते है कि मैं किसी से एक पैसा ली हूँ और मैं चोर हूँ, ये कोई मुझे बदनाम नहीं कर सकते कि इस कारण से मैंने मतलब टीएमसी को।
1: लेकिन जिस तरह

0: now. Just search Today's Hits or ask your device to play Today's Hits on TuneIn.
1: माफ कीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 142वें स्थान पे हैं नरेंद्र मोदी जी के राज में।
2: लंबे समय तक भारत सरकार के प्रबंधन की वजह से लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी वृद्धि हो रही है। लेकिन जैसे ही पश्चिम एशिया का संकट सुलझेगा, होर्मुज का विवाद सुलझ जाएगा, तो ये स्थितियां सामान्य होने लगेंगी और लोगों की मुश्किलें आसान भी होंगी।

0: It was agreed to send a letter to Chief Justice of India on SIR. Vote, loot and stealing elections. The letter to be delivered to the Chief Justice of India very soon. It was unanimously agreed to demand the immediate resignation of the Education Minister because he presided over the betrayal of lakhs of youth who appeared for NEET and CBSE examination.
1: चांदनी कुरैशी ने मित्रता की और फिर अपने जाल में, प्रेम जाल में फंसाया, उसकी वीडियो बनाई और फिर उसको अपने साथ निकाह करने के लिए तैयार किया। इस डर में इस्लाम मजहब स्वीकार करके उसने उस चांदनी कुरैशी के साथ में निकाह पढ़ लिया। चांदनी कुरैशी और उसके परिवार पर शिकंजा कसा जाए।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: No drama, just the real Korean ritual. In every bottle of Aquajay, infused with Jeju-grown botanicals and powered by K-Beauty Science. Aquajay, now in India.
1: आपका नाम क्या हो चुका है?
2: आयुष मलिक नाम है, डॉक्यूमेंट्स में वही नाम है, मोहम्मद अली जो मैंने नाम अपनाया।
1: अच्छा, तो किस तरह से आप मोहम्मद अली बने, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए।
2: मोहम्मद अली नाम तो मैंने अभी रखा, इस्लाम में मैं कैसे आया वो धीरे धीरे करके सीख कर आया।
1: अच्छा, कैसे कॉन्टेक्ट में आए आप चांदनी कुरैशी के, पूरा अगर आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं। आप
2: फिजियोथेरेपिस्ट थी, वो शोल्डर इंजरी थी मुझे, लिगामेंट टियर था, फिजियोथेरेपी कराने जाता था, कभी कभार चले गए तो कॉन्टेक्ट में पता लग गया कि हाँ वो फिजियोथेरेपी है, मुसलमान है बस।
1: तो आपका मुस्लिम धर्म का जो परिवर्तन है वो कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में? कहाँ?
2: धर्म परिवर्तन कहीं पे नहीं होता, धर्म परिवर्तन तो अंदर से होगा, कभी भी करवा कर सको आप। इसमें कोई मौलवी प्रोफेशन काम नहीं होता।
1: अच्छा।
2: कि कोई मौलवी आपका निकाह पढ़ाएगा, मौलवी किसी का जनाजा पढ़ाएगा, या मौलवी आपका धर्म परिवर्तन कराएगा। अगर आप खुद से सीखने के काबिल है तो आप खुद से सीखो, खुद से सीखना चाहिए।
1: अच्छा, और किसका वीडियो, किस पाकिस्तानी मौलाना का वीडियो देखते थे? मतलब किस
2: देखता था? ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी का देखता था, डॉक्टर इशरार अहमद का ज्यादा देखता था, वो पॉइंट पकड़ा जा रहा।
1: चांदनी कुरैशी से आप कैसे मिले और किस तरह से नजदीकियां हुई? सुना शादी भी कर लिया आपने?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, 4 साल पहले निकाह हुआ था सर, 4 साल पहले निकाह हुआ था।
1: तो आयुष मलिक, आज आप इस्लाम दीन की बात कर रहे हैं, पहले आप पूजा पाठ मंदिर जाते थे, आप हिंदू थे?
2: उतना ज्यादा था नहीं सर मेरे अंदर, मैं क्योंकि यंग एज से ही टीन एज से सीखने लगा था ना धीरे धीरे करके।
3: दुनिया का इतिहास पढ़ा जाएगा भारत का खास तौर से, तो मोदी जी महंगाई मैन के रूप में जाने जाएंगे, और ये वो कीर्तिमान बना के जा रहे हैं महंगाई का। और मैं तो कहूंगा ये सरकार हट धर्मिता के साथ, सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, और कोई शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा।